मीडियम वेव 396.8 मीटर अर्थात 756 किलोवाट और एफएम बैंड 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का जगदलपुर केंद्र है। आप हमारे कार्यक्रम मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी सुन सकते हैं। आज सोमवार है, शक संवत 1948 के श्रावण मास की तीसरी तिथि, तदनुसार 20 जुलाई सन 2026। इस समय प्रातः के 5:56 और 45 सेकंड हुए हैं। हमारी प्रातःकालीन सभा अब आरंभ होती है।

मीडियम वेव और एफएम बैंड पर ये आकाशवाणी का जगदलपुर केंद्र है। इस समय सुबह के 6 बजने वाले हैं। समाचार कुछ ही पलों में अब हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले कर रहे हैं।

0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। संसद का मानसून अधिवेशन आज से शुरू हो रहा है। ये 13 अगस्त तक चलेगा। 25 दिन के अधिवेशन में सदन की 19 बैठक होंगी। इस दौरान कई महत्वपूर्ण विधेयक चर्चा और पारित करने के लिए सूचीबद्ध हैं। इससे पहले सरकार ने कल संसद भवन में सर्वदलीय बैठक बुलाई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बैठक की अध्यक्षता की। 40 राजनीतिक दलों के 50 से अधिक नेता बैठक में शामिल हुए। बैठक के पश्चात संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने सभी राजनीतिक दलों से महत्वपूर्ण मुद्दों पर सकारात्मक चर्चा करने का आग्रह किया।
1: कोई पार्टी या कोई मेंबर अपना जो भी बात रखना चाहता है पार्लियामेंट में पूरा रख सकते हैं। मैं विपक्ष के साथियों को कहना चाहता हूं कि पहले में भी पार्लियामेंट को चलाने में दिक्कत आई थी क्योंकि हंगामा बहुत ज्यादा हुआ था। लोग चाहते हैं कि पार्लियामेंट सुचारू रूप से चले, इसलिए मैं फिर से सब पार्टी के नेताओं को मैं अनुरोध करता हूं कि पार्लियामेंट अच्छी तरह से चले, इसमें सब लोग योगदान करें।
0: लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कल कार्य मंत्रणा समिति की बैठक बुलाई। इस दौरान सरकार और विभिन्न राजनीतिक दलों के सदस्यों ने सत्र में उठाए जाने वाले विधायी और अन्य मुद्दों पर चर्चा की। सदस्यों ने जनहित और राष्ट्रीय महत्व के कई मुद्दों पर चर्चा का सुझाव दिया। श्री बिरला ने रचनात्मक चर्चा, सार्थक सहयोग और संसदीय परंपराओं के उच्च मानदंडों का पालन करने के महत्व पर बल दिया। उन्होंने सभी दलों से अपील की कि वे कार्यवाही को सुचारू और व्यवस्थित ढंग से चलाने में पूरा सहयोग दें। दिल्ली पुलिस ने स्पष्ट किया है कि आज से शुरू हो रहे संसद अधिवेशन के मद्देनजर नई दिल्ली जिले में किसी भी विरोध मार्च या जुलूस के लिए किसी ने कोई अनुमति नहीं मांगी है और न ही दी गई है। पुलिस ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि क्षेत्र में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 लागू है, इसीलिए जंतर मंतर को छोड़कर क्षेत्र में विरोध मार्च, जुलूस, प्रदर्शन और 5 या अधिक व्यक्तियों के जमावड़े पर सख्त प्रतिबंध है। मध्य प्रदेश विधानसभा का मॉनसून सत्र आज से शुरू हो रहा है। इस सत्र में समान नागरिक संहिता यूसीसी विधेयक पेश किया जाएगा। मंत्रिमंडल ने कल इस विधेयक के मसौदे को सर्वसम्मति से मंजूरी दी। भोपाल में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में ये फैसला किया गया। मुख्यमंत्री

0: प्रौद्योगिकी, नवाचार, शिक्षा तथा जनसंपर्क क्षेत्र में सहयोग बढ़ाना है। इन तीन देशों की यात्रा द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ावा देने की दृष्टि से महत्वपूर्ण मानी जा रही है। रोमानिया और मोल्दोवा में भारत के राजदूत डॉ. मनोज कुमार महापात्रा ने राष्ट्रपति की यात्रा को ऐतिहासिक बताया। उन्होंने कहा कि भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते के संपन्न होने से आने वाले वर्षों में इन देशों के साथ द्विपक्षीय आर्थिक साझेदारी और मजबूत होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 58वें अंतर्राष्ट्रीय रसायन विज्ञान ओलंपियाड में 4 स्वर्ण पदक जीतने पर भारतीय टीम को बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि ये प्रतिष्ठित वैश्विक प्रतियोगिता में भारत का अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। श्री मोदी ने लिथुआनिया में 37वें अंतर्राष्ट्रीय जीव विज्ञान ओलंपियाड में स्वर्ण सहित सभी 4 पदक जीतने पर भारतीय टीम के सभी सदस्यों को भी बधाई दी। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये उपलब्धि अनगिनत युवाओं को विज्ञान का अध्ययन करने और उसमें उत्कृष्टता प्रदान करने के लिए प्राप्त करने के लिए प्रेरित करेगी। स्पेन ने अतिरिक्त में मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना को 1-0 से हराकर फीफा विश्व कप जीत लिया है। न्यूयॉर्क न्यूजर्सी स्टेडियम में फाइनल में स्पेन के सब्स्टिट्यूट फेरान टोरेस ने 106वें मिनट में गोल करके अपनी टीम को जीत दिलाई। 90 मिनट तक संघर्षपूर्ण और रोमांचक मैच में कोई गोल नहीं हो पाया था। ये स्पेन का दूसरा पुरुष फीफा विश्व कप का खिताब है। इससे पहले उसने 2010 में खिताब जीता था। इस जीत के साथ स्पेन एक ही समय में पुरुष और महिला फुटबॉल विश्व कप विजेता पहला देश बन गया है। और पुरुष क्रिकेट में इंग्लैंड ने लंदन के लॉर्ड्स में तीसरे और निर्णायक एक दिवसीय मैच में भारत को 27 रन से हराकर श्रृंखला 2-1 से जीत ली है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेव और एफएम बैंड पर ये आकाशवाणी का जगदलपुर केंद्र है।

आइए अब सुनते हैं विष्णु प्रसाद पांडे के स्वर में ये शिव अर्चना। नमामि शंभुम पुरुषम पुराणम, नमामि सर्वज्ञम पारभावम, नमामि रुद्रम प्रभुमक्षयम, तम नमामि शर्वम शिरसा नमामि।

0: अभी आप सुन रहे थे भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना, मीडियम व्यू 396.82 मीटर अर्थात 756 किलोहर्ट्ज और एफएम बैंड 100.1 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का जगदलपुर केंद्र है। सुबह के 6:20 हुए हैं। लीजिए सुनिए आज का चिंतन।
1: आर्थिक, सामाजिक और आध्यात्मिक प्रगति के साथ साथ भय ने मनुष्य को बुरी तरह से जकड़ रखा है। दूसरे शब्दों में, निरंतर विकास के साथ साथ व्यक्ति अज्ञात भय का शिकार भी होता चला जा रहा है। मनोचिकित्सकों का मानना है कि भय मन का एक नकारात्मक भाव है। अज्ञात भय की आशंका व्यक्ति की तर्क शक्ति को निष्प्रभावी बना देता है, फलस्वरूप व्यक्ति की रचनात्मक शक्ति कुंद हो जाती है। अज्ञात भय के भाव मन में उपजने के कई कारण हो सकते हैं, लेकिन मूलतः यह असुरक्षा और एकाकीपन के भाव के कारण जो मन में अवसाद निर्मित होते हैं उनके कारण उत्पन्न होता है। स्वामी विवेकानंद ने ठीक ही कहा है, भय से ही दुख आते हैं और भय से ही मृत्यु होती है। डर यानी भय एक गंभीर मानसिक रोग है। व्यक्ति कितना भी विकास कर ले किंतु वह अवसाद से बच नहीं पाता है, क्योंकि विकास की गति एकाकीपन के सिकंजों में व्यक्ति को जकड़ने लगता है और अवसाद यहीं से उसके मन में डेरा जमाना

0: भय पर नियंत्रण पा सकता है। अव्वल तो जीवन में भय को पास नहीं आने देना चाहिए। इसके बावजूद यदि अज्ञात भय मन को विचलित करे तो संयम से काम लेना चाहिए। कुल मिलाकर भय से दूर भागने की बजाय उसका सामना करना चाहिए। इसलिए नेल्सन मंडेला ने कहा था, भय का नहीं होना साहस का लक्षण नहीं है, बल्कि भय पर विजय पाना साहस है। बहादुर वह नहीं है जो भयभीत नहीं होता है, बल्कि वह है जो इस भय को परास्त कर देता है। इसलिए किसी कारणवश अज्ञात भय आपको सताए तो उसे अनदेखा करने की बजाय उसे पार पाने का प्रयास करें, क्योंकि तभी जीवन रूपी इम्तिहान में आप सफल हो सकते हैं।
1: अभी आपने सुना चिंतन, आलेख और स्वरधार राजेंद्र कुमार तिवारी का। आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है।
2: जीएसटी से जुड़ी नई खबर ने आम लोगों और निवेशकों दोनों को राहत दी है। सबसे बड़ी राहत खाने पीने के सामान पर दी गई है। ब्रेड, रोटी और छेना पनीर पर अब कोई जीएसटी नहीं लगेगा। इसके अलावा 33 जरूरी दवाइयों के दाम कम कर दिए गए हैं, जिससे इलाज का खर्च भी घटेगा। लाइफ इंश्योरेंस पर भी पूरी तरह जीएसटी छूट दी गई है, जिससे पॉलिसी खरीदना अब और सस्ता हो जाएगा। छोटी कारों और 350 सीसी तक की बाइक पर जीएसटी 28% से घटाकर 18% कर दिया गया है। इसका मतलब है कि गाड़ी या बाइक खरीदने का सपना अब पहले से सस्ता हो सकता है।
3: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
4: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
3: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
4: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
3: डायल कीजिए 8700014242।
4: नंबर एक बार फिर नोट करें, 8700014242।
1: आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। आइए सुनते हैं श्री रामचरितमानस का गायन। स्वर है मन्ना डिया और शोभा जोशी का, संगीत सतीश भाटिया का है।

वही मेरे प्रभु जड़ चेतन के स्वामी और सबका अंतर्मन जानने वाले हैं। पार्वती का प्रश्न सहज था, तब उन्होंने किस कारण मनुष्य का शरीर धारण किया? उमापति ने तब निर्मल रामचरितमानस की वो मंगलमय कथा सुनाई जिसे काकभुशुंडी ने विस्तार से पक्षीराज गरुड़ को सुनाया था। वेद शास्त्रों ने श्री हरि के सुंदर, विस्तृत और निर्मल चरित्रों का गान किया है। हरि का अवतार जिस कारण से होता है उसके बारे में ये नहीं कहा जा सका कि वो कारण बस यही है। जब जब धर्म का ह्रास होता है और नीच अभिमानी राक्षसों का प्रकोप बढ़ जाता है, तब तब प्रभु विविध रूपों में शरीर धारण कर सज्जनों की पीड़ा हरते हैं।

0: इसके गायन का प्रसारण किया गया। स्वर था मन्ना डे और शोभा जोशी का, संगीतबद्ध किया था सतीश भाटिया ने। मीडियम वेव और एफएम बैंड पर ये आकाशवाणी का जगदलपुर केंद्र है। सुबह के 6:35 हुए हैं। प्रस्तुत है कृषि सामयिकी की बेड़ा खड़ा चुगोट।
1: धान फसल ने कीड़ी अरू रोग राई मंचो नियंत्रण कसन करतो राय। धान फसल ने चुके करून कल्चर जैविक अरु रासायनिक कीटनाशक ओखत मनले रोग राई अरु कीड़ी मन के मरलातोर और बचातोर उवाट किए जाए से। कल्चर विधि जो नए उनने बीज के उपचार करून हुनके फिर बुंदो काम ने आंतर होए से। संगे संग जो लाटा बूटा जेके आमी खरपतवार बल बलू से हुन खरपतवार मन के मरलातोर अरु जो नामी उपाय अरु ओखत रासायनिक विधि देऊ से हुनचो संतुलित बलो ने सांगलो नाप हिसाब ले हमके देतोर खूब जरूरी आए। गोटो को से जैविक विधि, ये विधि ने कीड़ी मंचो अंडा मन के बायो कंट्रोल अरु ट्राइको कार्ड उवाट ले मरलातोर उवाट किए जाए से। असने गोटो को से रासायनिक कीटनाशक, रासायनिक कीटनाशक जो उपयोग जो नाय एके आईपीएम ने आखरी उपाय के रूप ने करतोर हो से। बोलो ने ये उवाट मन आम के इन्नी सफल होली जाले हुन समय ने रासायनिक कीटनाशक जो उपयोग करून आम के रोकथाम करतो राय। एबे जानू धान फसल ने जुगे करून काय काय रोग बीमारी मन होय सोत। धान फसल ने जुगे करून ब्लास्ट रोग होय से। ये रोग धरलो ने बूटा चो पाना मन मोड़िया हुन जाय से अरु हुनचो बाढ़ थेबुन जाय से। ये चो रोकथाम काजे ट्राई साइक्लोजोल 2 ग्राम प्रति किलोग्राम हिसाब ले बीजा पाछे आम के बीजा के उपचारित करून भूंदो राय। गोटो खोय से भूरिया दागी रोग, ए रोग ने पाना उपरे दागी असन दखा दे से अरु धान जो जो नामी पोडरातो बेरा जो नुआ बाली मन निकरे से हुनके नुकसान अमराय से और हुनचो उपरे दागी दखा दे से। एचो रोकथाम काजे थीरम 5 ग्राम के 1 किलो बीजा हिसाब ने बीजा के उपचार करून भूनतो राय। और गोटो खोय से पाना छेदक, पाना छेदक बलो ने आमी नाव ले जानू से कि ये पाना के छेदा करे से। एके ब्लाइट नहाले अंग मारी रोग बलु खोय से। एके मरलातो काजे प्रोपे कोनाजोल 20 मिलीलीटर के 15 से 20 लीटर पानी ने घोरून आम के चीज तोराए। ये तो होली रोग चोगोट। असने हो से कीड़ी मन बल, कई कीड़ी मन आम चो धान फसल ठिया फसल के नुकसान अमरासोत। तो कीड़ी मन ने गोटो खोय से पत्ती लपेटक।

0: टार तोराय। असने गोटोक होइसे कुरमुला किड़ी। ये किड़ी मन बूटा चोबून के खासोत अरु नुकसान अमरासोत ए मन के मरलातो काजे ठिया फसन ने क्लोर पाई रिफांस 20 EC जो 80 ml के 1 kg हिसाब ले रेती नाले राख ने मिसाउ चीज तोराय और बूटा जो बूंद ने पड़ो असन हिसाब ले आम के होता चीज तोराय। असन वाट करून आमी आमचो धान फसल जो नामी कमालू से हुन बेड़ा ने हुनके नुकसान ले बचाउ सकू और आमचो खेतिहार भाई बहन मन आप लोग धान फसल जो कमाने के अच्छा उपज संग पाउ सकोत और हुन अच्छा उपज पावलो ने स्वस्थ उपज पावलो ने हुन मन के लाभ तो अधिक हो से तो असन सांगलो हिसाब ले हम जो खेतियार भाई बहन मन आप लोग धान कमाने के करु सको।
1: अभी आप सुन रहे थे कृषि सामयिकी की बेड़ा खड़ा चौगोट मीडियम वेव 396.82 meters अर्थात 756 kHz और FM बैंड 100.1 MHz पर हम आकाशवाणी के जगदलपुर केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं आप हमारे कार्यक्रम मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी सुन सकते हैं। इस समय सुबह के 6:40 हुए हैं। हुलहुली कार्यक्रम में आज सुनिए भीमा देवपाड़ वादक कलाकार हैं गणपति कड़ियारी और साथी

हुलहुली कार्यक्रम में आज आप सुन रहे थे भीमादेव पाड़, वादक कलाकार थे गणपति कड़ियारी और साथी। ये आकाशवाणी का जगदलपुर केंद्र है। लीजिए सुनिए हमारे केंद्र से प्रसारित किए जाने वाले आज के कार्यक्रमों की रूपरेखा। श्रोताओं, आज रात 8 बजे सुनिएगा संसद समीक्षा और रात 9:30 पर सुनिएगा कार्यक्रम संसद के समक्ष मुद्दे। ये दोनों कार्यक्रम हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। आज सुबह 8:30 पर छत्तीसगढ़ी लोक संस्कृति पर केंद्रित समन्वित कार्यक्रम छत्तीसगढ़ के लोक सुर प्रसारित किया जाएगा, जिसे हम आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे। अब से कुछ देर बाद सुबह 7:05 पर सुनिएगा हमारा दैनिक कार्यक्रम नमस्कार जगदलपुर। इस कार्यक्रम में आज के आकर्षण होंगे डॉक्टर सतीश की वार्ता, वृक्षों से दूर होते बटोही। साथ ही सुनिएगा सुमधुर फिल्मी गीतों से सजी मधुरी माँ। सुबह 9 बजे सुनिएगा लोक साहित्य पत्रिका मोचो माटी, संपादक होंगे बलबीर सिंह कच्च। सुबह 9:30 पर सुनिएगा कार्यक्रम एक ही फिल्म से, आज की फिल्म होगी ओमकारा। सुबह 10 बजे गुलशन कार्यक्रम में आज हम प्रसारित करेंगे पुराने फिल्मी नगमे। गुरुदुम कार्यक्रम में सुबह 10:30 पर आज हम आपको सुनवाएंगे लच्छूराम और साथियों के स्वर में गोंडी लोकगीत, एक ही कलाकार। ये कार्यक्रम हम प्रसारित करेंगे सुबह 11 बजे। आज का हमारा ये कार्यक्रम केंद्रित होगा फिल्म अभिनेता नसीरुद्दीन शाह पर। सुबह 11:30 पर कार्यक्रम पाटा केंजा में आज सुनिएगा मासो और साथियों के स्वर में गोंडी लोकगीत। दोपहर 12 बजे सुनिएगा कार्यक्रम कला और कलाकार। ग्रामीण महिलाओं का कार्यक्रम घर द्वार प्रसारित किया जाएगा दोपहर 12:30 पर। बेड़ा खाड़ा जो गुट का पुनः प्रसारण किया जाएगा दोपहर 1:05 पर। फरमाइशी फिल्मी गीत सुने जा सकते हैं कार्यक्रम श्रोता सुमन में दोपहर 1:10 पर। दोपहर 2:30 पर हम लेकर आएंगे प्रायोजित कार्यक्रम NCERT। हमारी संध्याकालीन सभा में शाम 5:05 पर सुनिएगा समसामयिक विषयों पर आधारित कार्यक्रम भारत सरकार आपके द्वार हल्बी बोली में। शाम 5:10 पर युवा श्रोता साथी सुन सकते हैं अपना पसंदीदा कार्यक्रम युववाणी। शाम 6:30 पर हम आपको सुनवाएंगे मेघनाथ पटनायक और साथियों के स्वर में हल्बी लोकगीत। दैनिक कार्यक्रम बस्तर के स्वर का प्रसारण किया जाएगा शाम 7 बजे।

ग्रामीण श्रोताओं का कार्यक्रम आमचो गांव हम प्रसारित करेंगे शाम 7:21 पर। रात 8:15 पर कार्यक्रम नानोली में आज गोंडी लोक गीत के कलाकार होंगे पनकू और साथी। रात 8:30 पर कार्यक्रम पीलामन काजे गोट, प्रस्तुति होगी नम्रता ठाकुर की। रात 9:15 पर सुनेगा कार्यक्रम जीवना चौसोर। आज इस कार्यक्रम में सुनेगा पंचवटी महिला स्व सहायता समूह की सदस्य श्रीमती गोमती कश्यप से ली गई बलबीर सिंह कच्छ की भेंट वार्ता।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा। संसद का मॉनसून अधिवेशन आज से शुरू हो रहा है। ये 13 अगस्त तक चलेगा। 25 दिन के अधिवेशन में सदन की 19 बैठकें होंगी। इस दौरान कई महत्वपूर्ण विधेयक चर्चा और पारित करने के लिए सूचीबद्ध हैं। इससे पहले सरकार ने कल संसद भवन में एक सर्वदलीय बैठक बुलाई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बैठक की अध्यक्षता की। 40 राजनीतिक दलों के 50 से ज्यादा नेता बैठक में शामिल हुए। बैठक के बाद संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने सभी राजनीतिक दलों से महत्वपूर्ण मुद्दों पर सकारात्मक चर्चा करने का आग्रह किया।
1: कोई पार्टी या कोई मेंबर अपना जो भी बात रखना चाहता है पार्लियामेंट में पूरा रख सकते हैं। मैं विपक्ष के साथियों को कहना चाहता हूं कि पहले में भी पार्लियामेंट को चलाने में दिक्कत आई थी क्योंकि हंगामा बहुत ज्यादा हुआ था। लोग चाहते हैं कि पार्लियामेंट सुचारू रूप से चले, इसलिए मैं फिर से सब पार्टी के नेताओं को मैं अनुरोध करता हूं कि पार्लियामेंट अच्छी तरह से चले, इसमें सब लोग योगदान करें।
0: लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कल कार्य मंत्रणा समिति की बैठक बुलाई। इस दौरान सरकार और विभिन्न राजनीतिक दलों के सदस्यों ने सत्र में उठाए जाने वाले विधायी और अन्य मुद्दों पर चर्चा की। सदस्यों ने जनहित और राष्ट्रीय महत्व के कई मुद्दों पर चर्चा का सुझाव दिया। श्री बिरला ने रचनात्मक चर्चा, सार्थक सहयोग और संसदीय परंपराओं के उच्च मानदंडों का पालन करने के महत्व पर भी बल दिया। उन्होंने सभी दलों से अपील की कि वे कार्रवाई को सुचारू और व्यवस्थित ढंग से चलाने में पूरा सहयोग दें। दिल्ली पुलिस ने स्पष्ट किया है कि आज से शुरू हो रहे संसद अधिवेशन के मद्देनजर नई दिल्ली जिले में किसी भी विरोध मार्च या जुलूस के लिए किसी ने कोई अनुमति नहीं मांगी है और न ही दी गई है। पुलिस ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि क्षेत्र में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 लागू है, इसलिए जंतर मंतर को छोड़कर क्षेत्र में विरोध मार्च, जुलूस, प्रदर्शन और 5 या अधिक व्यक्तियों के

सत्र आज से शुरू हो रहा है। इस सत्र में समान नागरिक संहिता यूसीसी विधेयक पेश किया जाएगा। मंत्रिमंडल ने कल इस विधेयक के मसौदे को सर्वसम्मति से मंजूरी दी। भोपाल में मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव की अध्यक्षता में यह फैसला किया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि समान नागरिक संहिता से राज्य में सभी को समान दर्जा मिलेगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू तीन देशों मॉल्दोवा, उत्तरी मैसिडोनिया और रोमानिया की यात्रा पर हैं। इस यात्रा का

0: भारतीय टीम को बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि ये प्रतिष्ठित वैश्विक प्रतियोगिता में भारत का अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। श्री मोदी ने लिथुआनिया में 37वें अंतर्राष्ट्रीय जीव विज्ञान ओलंपियाड में स्वर्ण सहित सभी चार पदक जीतने पर भारतीय टीम के सभी सदस्यों को बधाई दी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये उपलब्धि अनगिनत युवाओं को विज्ञान का अध्ययन करने और उसमें उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए प्रेरित करती रहेगी। स्पेन ने अतिरिक्त समय में मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना को 1-0 से हराकर फीफा विश्व कप जीत लिया है। न्यूयॉर्क न्यू जर्सी स्टेडियम में फाइनल में स्पेन के सब्स्टिट्यूट फेरान टोरेस ने 106वें मिनट में गोल करके अपनी टीम को जीत दिलाई। 90 मिनट तक संघर्षपूर्ण और रोमांचक मैच में कोई गोल नहीं हो पाया था। ये स्पेन का दूसरा पुरुष फीफा विश्व कप खिताब है। इससे पहले उसने 2010 में यह खिताब जीता था और इस जीत के साथ ही स्पेन एक समय में पुरुष और महिला फुटबॉल विश्व कप विजेता पहला देश बन गया है। पुरुष क्रिकेट में इंग्लैंड ने लंदन के लॉर्ड्स में तीसरे और निर्णायक एक दिवसीय मैच में भारत को 27 रन से हराकर श्रृंखला 2-1 से जीत ली है। और इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम व्यू 396.82 मीटर अर्थात 756 किलोहर्ट्ज और एफएम बैंड 100.1 मेगाहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का जगदलपुर केंद्र है। आप हमारे कार्यक्रम मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी सुन सकते हैं। इस समय 7:05 हुए हैं। प्रस्तुत है हमारा दैनिक कार्यक्रम नमस्कार जगदलपुर।

आज के नमस्कार जगदपुर कार्यक्रम से स्वीकारे मेरा यानी भरत कुमार गंगादित्य का प्यार भरा अभिवादन। आज इस कार्यक्रम में सुनिएगा वार्ता वृक्षों से दूर होते बटोही और मधुरिमा।

श्रोताओ, आज 20 जुलाई है और आज के दिन को प्रतिवर्ष विश्व शतरंज दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये दिवस अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ की स्थापना के उपलक्ष्य में सन 1966 से मनाया जा रहा है। इस दिवस को मनाने की शुरुआत 20 जुलाई सन 1924 को पेरिस में हुई। संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा सन 2019 में इसे आधिकारिक मान्यता दी गई। श्रोताओं, शतरंज सबसे प्राचीन बौद्धिक और सांस्कृतिक खेलों में से एक है, जिसमें खेल भी है, वैज्ञानिक चिंतन भी है और कला के तत्व भी समाहित हैं। ये एक किफायती खेल है जिसे कहीं भी खेला जा सकता है। ये खेल भाषा, उम्र, लिंग, शारीरिक क्षमता या सामाजिक स्थिति की बाधाओं से दूर है। सभी लोग इसे खेल सकते हैं। शतरंज एक वैश्विक खेल है जो कि आपसी सम्मान को बढ़ावा देता है। यहाँ हम ये कह सकते हैं कि शतरंज का खेल लोगों और राष्ट्रों के बीच सहिष्णुता और समझ का माहौल बनाने में योगदान दे सकता है। श्रोताओ, 20 जुलाई को ही अंतर्राष्ट्रीय चांद दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। ये दिवस इसलिए महत्वपूर्ण है कि 20 जुलाई सन 1969 को अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री नील आर्मस्ट्रांग और बज एल्ड्रिन ने अपोलो 11 के माध्यम से पहली बार चंद्रमा पर अपना कदम रखा था। इस दिवस को मनाने की घोषणा संयुक्त

ट्रस्ट के द्वारा सन 2021 में की गई। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य है चंद्रमा के अन्वेषण और अनुसंधान से जुड़ी उपलब्धियों का जश्न मनाना तथा अंतरिक्ष विज्ञान के प्रति जन जागरूकता पैदा करना। श्रोता, वैसे तो चंद्रमा को बचपन से ही एक कल्पना के रूप में हम मामा के रूप में सुनते आए हैं। आज चंद्रमा दिवस के अवसर पर हमारा बस यही कहना है कि चंद्रमा जिस तरह शीतल होता है, हम भी उसी तरह क्यों न अपने आप को शीतल बनाने का अभ्यास करें, क्योंकि शीतलता और धैर्य धारण करके हम कठिनाइयों पर आसानी से विजय प्राप्त कर सकते हैं।

0: श्रोताओं, ये था गीत लता मंगेशकर और सुषमा श्रेष्ठ की आवाजों में। गीतकार थे गौहर कानपुरी, संगीतकार थे बप्पी लाहिरी, फिल्म थी जख्मी। श्रोताओं, आप सुन रहे हैं नमस्कार जगदलपुर।
1: एक मजबूत घर बिल्कुल उस पिता की तरह होता है जो हर मौसम सहकर भी घर की नींव को कभी हिलने नहीं देता।
2: आपके घर के लिए भरोसे का दूसरा नाम चेटिनाड सीमेंट का मैक्सक्रीट सीमेंट, 64 सालों की बुनियाद के साथ। चेटिनाड सीमेंट, द परफेक्ट कंक्रीट चॉइस।
3: देश के कोने कोने तक पहुंचाने के लिए अपनी बात कीजिए विज्ञापन आकाशवाणी के साथ। डायल कीजिए हमारा टोल फ्री नंबर 15102।
4: जीएसटी से जुड़ी नई खबर ने आम लोगों और निवेशकों दोनों को राहत दी है। सबसे बड़ी राहत खाने पीने के सामान पर दी गई है। ब्रेड, रोटी और छेना पनीर पर अब कोई जीएसटी नहीं लगेगा। इसके अलावा 33 जरूरी दवाइयों के दाम कम कर दिए गए हैं, जिससे इलाज का खर्च भी घटेगा। लाइफ इंश्योरेंस पर भी पूरी तरह जीएसटी छूट दी गई है, जिससे पॉलिसी खरीदना अब और सस्ता हो जाएगा। छोटी कारों और 350 सी जीएसटी 28% से घटाकर 18% कर दिया गया है। इसका मतलब है कि गाड़ी या बाइक खरीदने का सपना अब पहले से सस्ता हो सकता है।
5: माटी की सौंधी खुशबू के साथ,
6: पवन के ठंडे झोंके के साथ,
5: हिलोरे लेगी
6: आकाश की वाणी।
5: आकाशवाणी,
7: विज्ञापन के लिए संपर्क करें आकाशवाणी जगदलपुर आकर,
5: या फोन करें 222150 या 222400,
6: 222150 या 222400।
8: विविध भारती के खजाने से हम आपके लिए लाते हैं अनमोल कार्यक्रम।
9: फौजी भाइयों की खिदमत में आपका खादिम नौशाद आदाब पेश करता है, कबूल फरमाइए।
8: कल और आज के ऐसे ही नामचीन सितारों को आप सुनते हैं विशेष जयमाला में, हर शनिवार और रविवार शाम 7:05 पर। विविध भारती आप सुन सकते हैं देश के कोने कोने में, मीडियम वेव पर, शॉर्ट वेव पर, FM पर। विविध भारती, आपकी बात पहुंचाए करोड़ों तक। विविध भारती पर विज्ञान

0: अपन बुक कराने के लिए हमारा टोल फ्री नंबर है 15102 या लॉग ऑन करें csuair.org.in। विविध भारती, देश की सुरीली धड़कन।
1: नमस्कार, जगदलपुर के अगले क्रम में आइए सुनते हैं वार्ता वृक्षों से दूर होते बटोही। वार्ताकार हैं डॉक्टर सतीश।
2: शिकार और संचय की आदिम जीवन शैली की नैसर्गिकता से हम चाहे जितनी दूर चली जाएं, तरक्की के आकाश में जितनी चाहे फर्राटेदार और ऊंची उड़ान भर लें, पर जीवन का जड़ों से नाता कभी नहीं टूटता। जन्म से मृत्यु तक के अनंत सफर में वृक्ष या पेड़ हमारे हमराह होते हैं। जन्म होते ही हिंडोले या जिस पालने में हमारा बचपन पलता है, वह पलना भी लकड़ी का होता है। जिस डोले पर बैठकर दुल्हन ससुराल आती है, वह डोली भी लकड़ी की होती है। यही नहीं, जीवन की अंतिम यात्रा के लिए जिस काठी पर हम सवार होते हैं, वह भी लकड़ी और बांस की बनी होती है। यानी जीते लकड़ी, मरते लकड़ी, अजब तमाशा लकड़ी का। मानव जीवन के लिए लकड़ी आखिर आती कहाँ से है? कोई कहेगा जंगल से, तो सवाल है कि जंगलों में लकड़ी पैदा करता कौन है? लकड़ी हमें पेड़ों से, वृक्षों से मिलती है। जंगलों को पेड़ों के, वृक्षों के बिना देखना ऐसा ही महसूस होता है जैसा विधवा की सुनी मांग को देखने पर होता है। युगीन सभ्यता और संस्कृति की रोज बढ़ती और गढ़ती नई परिभाषा ने मनुष्य को कुदरत के करीब से दूर करने का सिलसिला जब से शुरू किया है, वह खत्म होता नजर ही नहीं आता। पहले उसने अपना ही वंश बढ़ाने इतनी लड़ाइयां लड़ी कि धरती का एक हिस्सा लहू से भींग उठा। जब सत्ता का नशा सिर पर चढ़कर बोलने लगा, तो उसने ऐसे विचित्र कारनामों को अंजाम दिया कि खुद चकित होकर दांतों तले उसने अपनी अंगुली दबा ली। बदलाव का दौर इतनी तेजी पकड़ता चला गया कि सहज रूप से सुलभ हवा, पानी, ईंधन का मोल इतना चुकाना पड़ रहा है कि जन सामान्य कराह उठा है। इतना अधिक नैसर्गिक जंगल नष्ट किया जा चुका है कि धरा का संतुलन बिगड़ चुका है। एक ही समय धरती के एक छोर में तन को झुलसा देने वाली लपट चलती है, तो दूसरी छोर में अनायास प्रलयंकारी बाढ़ कईयों की जान ले लेती है। मानव ने खुद की आबाद बस्ती बसाने के लिए न जंगलों को छोड़ा है और न जलाशयों को। भौतिकवाद से पीड़ित मनुष्य की अपनी पीड़ा को इस उदाहरण से अच्छी तरह समझा जा सकता है। हाल ही में टीवी के एक न्यूज चैनल में भारत की राजधानी दिल्ली के आसपास पास कॉलोनी में छाए जल संकट की व्यथा को लोगों के माध्यम से बताया। पीड़ित ये लोग बता रहे थे कि उनके क्षेत्र में पानी की इतनी कमी हो चली है कि अब उन्होंने बाथटब में बैठकर नहाना शुरू कर दिया है, और ऐसा करना इसलिए उनकी मजबूरी बन गई है कि नहाने के बाद बचे पानी का उपयोग वे निस्तार के लिए यानी कपड़े बर्तन धोने के लिए करने लगे हैं। अब तो जल संकट तीसरे विश्व युद्ध का जनक माने जाने लगा है। जल संकट का यह रूप आखिर आना ही था। हमने अपने पारंपरिक जल स्रोतों को भुला जो दिया है, न पहाड़ियों, न कुओं, न जलाशयों, न तालाब, किसी भी धरोहर की चिंता ही नहीं की। अब तो कंटेनरों, बोतलों और पाउचों में पानी बेचने का उद्योग सबसे सुरक्षित और फायदेमंद बन चुका है। जल ही जीवन है, या पानी बिन सब सुन मुहावरे की तरह रट कर भी जल संरक्षण संवर्धन की तमाम कोशिशें कागजी बनकर रह जाती हैं। कहा जाता है जल का संचय वहीं अधिक होता है जहां नैसर्गिक रूप से पेड़ पौधे होते हैं। जड़ों को भी जीवन के लिए जल की जरूरत होती है। हमने अपने ड्राइंग रूमों की शोभा बढ़ाने, अपने लालच पर काबू न पाते बीती सदी में इतना जंगल काट डाला कि धरती का 3/4 भाग मरुभूमि नजर आने लगा है। एक जमाना था जब रियासत के राजा महाराजा अपनी रियाया के लिए सड़कें बनवाने के साथ सड़कों के दोनों छोर पर छाया और फलदार पेड़ लगवाया करते थे। उन दिनों यात्रा 9 दिन चले 2.5 कोस

की होती थी। यांत्रिक प्रगति ने दूरियों को तो कम किया ही, साथ ही इसी प्रगति ने पेड़ों का नाश भी बहुत किया है। जैसे जैसे रास्ते बनते गए और रास्तों में यांत्रिक वाहनों का जाना आना सहज हुआ, जंगल भी सस्ते में कटते चले गए। किसी ने सियासी सत्ता के लिए तो किसी ने हवस की पूर्ति के लिए बेखौफ होकर रात दिन जंगल काटा। वन्य जीवन के संरक्षण संवर्धन के लिए बनाए गए तमाम कानूनों को भी धता बताते नामचीन लोगों ने दिन के उजाले में काले हिरणों से लेकर मासूम खरगोशों और खूंखार शेर तक को मार डाला। वन्य जीवों की खालों, हड्डियों, मांस का करोड़ों का चोरी छिपे होता कारोबार पर्यावास के बिगाड़ने में सबसे ज़्यादा सहायक है। पर्यावास या प्रदूषण के प्रदूषित होने का सबसे बुरा असर मानव स्वास्थ्य पर पड़ा है। तनाव, मधुमेह, उक्त रक्तचाप, कैंसर और इस जैसे अनेक असाध्य रोगों का वह शिकार हो गया है। नैसर्गिक जंगलों से दूर होकर कंक्रीट के जंगल में रहने वाले इंसान को न साफ सुथरी हवा नसीब है और न शांत माहौल। शोरगुल से दूर प्रकृति के करीब जाने के साधन तो उसने सब जुटा लिए हैं, पर समय इतना भी नहीं बचा पाया है कि वह पेड़ों पर बसेरा डाले परिंदों का कलरव सुन सके, चिड़ियों की चहचहाहट सुन सके या नदी नाले प्रपात झरनों के बहते जलप्रपात का नाद सुन सके। पेड़ों की ठंडी छांव को भी एसी और कूलरों की हवा ने छीन लिया है। हरे भरे फलदार एक पेड़ को देखकर होने वाली खुशी अब नसीब की बात समझी जाने लगी है। कहा जाता है कि बढ़ता हुआ पौधा प्रगतिशील राष्ट्र की निशानी होता है, पर प्रगति की गति ने मानव और पेड़ों के करीबी रिश्तों की इतनी दुर्गति की है कि पेड़ कराहने लगे हैं। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मंचों से हरितिमा को बचाने आवाज बुलंद होने लगी है। दिवस पखवाड़े मनाकर पौधे रोपे जाने लगे हैं। शालाओं में उन्हीं बच्चों को प्रवेश देने की शर्त रखी जाने लगी है जिनके माँ बाप ने कम से कम एक पेड़ अपने जीवन में जरूर रोपा हो। सच है, धरती और आकाश का रिश्ता जुड़े रखने में पेड़ों की, पहाड़ों की बड़ी भूमिका है। ये बादलों से, आसमान से बोलते बतियाते रहते हैं। हरे भरे पेड़ जब झूमते शीतल बयार बहाते हैं तो भावनाओं की, संवेदनाओं की सुखद अनुभूति होती है। यात्रा की सारी थकन पल भर में कपूर हो जाती है। पेड़ों की अहमियत कभी न खत्म होने वाली कहानी है। पेड़ हमारे सपनों को साकार करते हैं, संतुलन कायम करते हैं, भूक्षरण रोकते हैं, जीव जंतुओं के पोषक वन हमें जीवन जल देते हैं। पेड़ों की महिमा बताते जैन मुनि क्षमा सागर कहते हैं कि एक पेड़ तुम उगाओ, एक पेड़ मैं। जब दोनों बड़े हो जाएंगे संस्कृति के उस क्रम को वे ही दोहराएंगे। पेड़ और पंछियों के रिश्ते के बारे में मुनिश्री का आगे कहना था कि आंधी आकर चली गई है, वृक्ष शोकाकुल और शांत खड़े हैं, इसके बावजूद भी चिड़ियों के घोंसले टूटे पड़े हैं। क्या अब कोई चिड़िया विश्वास से भरकर नया घोंसला बना पाएगी? आज बस्तर की पहाड़ी मैना भी अपने घोंसलों को बनाने पेड़ों की तलाश में भटक रही है। शहरी सभ्यता के उजाले में पेड़ों का करीबी रिश्ता इंसान से चाहे जितना दूर हुआ हो, पर बस्तर जैसे आदिवासी अंचल में वृक्ष और बटोही के रिश्ते की दरार अभी खाई नहीं बन पाई है। यूं भी उसके जीवन में टोरा, आम, महुआ, सालबी, तेंदुपत्ता जीविकोपार्जन का मुख्य जरिया बने हुए हैं। आस्था की उसकी देवी चाहे दंतेश्वरी हो या भगवान जगन्नाथ, सबकी यात्रा के लिए बनने वाला रथ लकड़ी का ही होता है। यही नहीं, मंगल अवसरों पर कामना की पूर्ति के लिए मौसम

के लिए जिन रसों का उन्मुक्त पान आदिवासी समाज करता है वे सल्फी, छींद और ताड़ के पेड़ों से ही मिलते हैं। बात यहीं पूरी नहीं हो जाती। वनवासियों के, आदिवासियों के जीवन में पेड़ों का इंसानी रिश्ता इतना अच्छा है कि वे अपने वाद विवाद तक इन्हीं पेड़ों की छाया में हल कर लेते हैं। दक्षिण बस्तर की ओर बहती नदी सबरी तट के

0: वे एक दूसरे की जान भी लेने में नहीं चूकते। बस्तर में बहुत सी हत्याओं के पीछे कारण यह नज़र आता है कि बेटे ने अपने बाप को इसलिए मार लिया कि बाप बेटे के हक के सल्फी के पेड़ से रस चुरा कर पी रहा था। आदिवासियों का पेड़ों से करीबी रिश्ता चाहे जितना हो, पर कहा गया है कि है अनिश्चित किस जगह बागवन सुंदर मिलेंगे, है अनिश्चित किस जगह गिरी गवहर मिलेंगे। ये निशानी मूक होकर भी बहुत कुछ बोलती है, पूर्व चलने के बटो ही बाट की पहचान कर ले।
1: अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर सतीश की वार्ता वृक्षों से दूर होते बटोही। श्रोताओं, एक सूचना सुने। फोन इन किसान वाणी की रिकॉर्डिंग प्रत्येक मंगलवार को दोपहर 3:30 से 4 बजे तक की जाती है। कल भी ये रिकॉर्डिंग होगी। विषय होगा सूकर पालन और विशेषज्ञ होंगे डॉक्टर देवेश कुमार गिरी। तो श्रोताओं, आप भी इस कार्यक्रम में फोन करके इस कार्यक्रम का हिस्सा बन सकते हैं। तो याद रखें, कल मंगलवार दोपहर 3:30 कार्यक्रम फोन इन किसानवाणी, और हमारा नंबर है 0778222666। तो ये थी सूचना। और श्रोताओं, अब समय है मधुरी माँ का, पर उससे पहले सुनते हैं ये संदेश।
2: अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
3: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प।
2: और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।
3: आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
2: बुकिंग है तो संपर्क करें 8700001-4242 पर।
3: 8700001-4242।
4: अरे गोपाल, जा तो सब्जी बाजार से नींबू और मिर्ची लेकर आना।
5: क्या बात है मालिक, आज आप नींबू और मिर्ची क्यों खा रहे हैं?
4: अरे पगले, खाने के लिए नहीं, दुकान में लगाने के लिए मंगवा रहा हूँ। तू तो देख रहा है, दिन भर बैठकर मक्खी मारता हूँ, 10 ग्राहक भी दुकान में नहीं आते।
5: आएंगे कैसे मालिक, हमारी दुकान का ठीक से प्रचार भी तो नहीं हो रहा है। मेरी मानिए तो आप भी अपनी दुकान का प्रचार आकाशवाणी से करवाइए, फिर देखिए हमारी दुकान में भी ग्राहकों की भीड़ लगेगी।
4: गोपाल, आज पहली बार तूने अक्लमंदी की बात की है रे।
5: क्यों नहीं मालिक, रेडियो जो सुनता हूँ।
6: अपनी दुकान, व्यापार या सेवा का प्रचार रेडियो से करवाइए। विज्ञापन बुक करने आकाशवाणी आइए।

0: विशेषज्ञ देंगे आपकी खेती से जुड़ी हर समस्या का आसान समाधान। बीज से लेकर बाजार तक हर सवाल का जवाब सीधे आपके लिए। और हाँ, इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग होगी हर मंगलवार दोपहर 3:30 से 4 बजे तक, तो आप भी जुड़िए और अपने सवाल हमें सीधे फोन पर बताइए। हमारा नंबर है 07782222666। फोन इन किसान वाणी, आपकी आवाज, आपकी कहानी, आपके खेतों की जुबानी।
1: पेश है मधुरिमा। जादू आता है तुम्हें या किसी और इल्म में माहिर हो, हमारे दिल पे कब्जा किसी आम शख्स का काम नहीं।

मौसम इश्क है तू एक कहानी बन गया, मेरे रूह को भिगो दे तू वो पानी बन गया।

मेरी बेचैनी का आलम मेरी बेचैनी से पूछो, मेरे चेहरे से पूछोगी तो कहेगा ठीक है सब कुछ।

अधिरोहमें आज आपने जिन फिल्मों के गीत सुने हुए थी, गुलाम, गोपी किशन, गुप्त, हकीकत और हसीना मान जाएगी, आवाजें थी कुमार सानू, अलका याग्निक, पूर्णिमा, उदित नारायण, हरिहरन और सोनू निगम की। और अब आज के नमस्कार जगदलपुर से मुझे यानी भारत कुमार गंगा दीदी को दें इजाजत। नमस्कार।

0: 216 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं हैं, मदद बस एक कॉल दूर है।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुनीश शर्मा। मुख्य समाचार। संसद का मॉनसून अधिवेशन आज से शुरू हो रहा है। सरकार ने सदन के सुचारू कामकाज के लिए सभी राजनीतिक दलों से सहयोग का आग्रह किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज चिसिनाउ में मोल्दोवा की राष्ट्रपति माइया संडू के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता करेंगे। मध्य प्रदेश मंत्रिमंडल ने समान नागरिक संहिता विधेयक को मंजूरी दी। जनजातीय समुदायों को इसके दायरे से बाहर रखा जाएगा। जम्मू कश्मीर के राजौरी और पुंछ जिलों में अचानक बाढ़ और भूस्खलन से 11 लोगों की मृत्यु, 8 लोग लापता। अमरीका ने 9वीं रात भी ईरान पर हमले किए। हॉर्मुज जलडमरू मध्य में तनाव गहराया और स्पेन ने फीफा विश्व कप जीता। खिताब का बचाव करने उत्तरी अर्जेंटीना को 1-0 से हराया। और अब समाचार विस्तार से। संसद का मॉनसून अधिवेशन आज से शुरू हो रहा है। ये 13 अगस्त तक चलेगा। हमारे संवाददाता ने बताया है कि 25 दिन के अधिवेशन में सदन की 19 बैठकें होंगी।
2: संसद के मानसून सत्र के दौरान कई महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा किया जाएगा। आज लोकसभा में सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीश संख्या संशोधन विधेयक 2026 पर चर्चा निर्धारित है, जबकि राज्यसभा में राष्ट्र गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 पर चर्चा सूचीबद्ध है। इसके अलावा मानसून सत्र के दौरान जन्म और मृत्यु पंजीकरण संशोधन विधेयक, आयकर संशोधन विधेयक और सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम विकास संशोधन विधेयक पर भी चर्चा किए जाने की संभावना है। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: इससे पहले सरकार ने कल संसद भवन में एक सर्वदलीय बैठक बुलाई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बैठक की अध्यक्षता की। 40 राजनीतिक दलों के 50 से अधिक नेता इस बैठक में शामिल हुए। बैठक के पश्चात संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने सभी राजनीतिक दलों से महत्वपूर्ण मुद्दों पर सकारात्मक चर्चा करने का आग्रह किया।
3: कोई पार्टी या कोई मेंबर अपना जो भी बात रखना चाहता है पार्लियामेंट में पूरा रख सकते हैं। मैं विपक्ष के साथियों को कहना चाहता हूं कि पहले में भी पार्लियामेंट को चलाने में दिक्कत आई थी, क्योंकि हंगामा बहुत ज्यादा हुआ था। लोग चाहते हैं कि पार्लियामेंट सुचारू रूप से चले, इसलिए मैं फिर से सब पार्टी के नेताओं को मैं अनुरोध करता हूं कि पार्लियामेंट अच्छी तरह से चले, इसमें सब लोग योगदान करें।
1: लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कल कार्य मंत्रणा समिति की बैठक बुलाई। इस दौरान सरकार और विभिन्न राजनीतिक दलों के सदस्यों ने सत्र में उठाए जाने वाले विधायी और अन्य मुद्दों पर चर्चा की। सदस्यों ने जनहित और राष्ट्रीय महत्व के कई मुद्दों पर चर्चा का सुझाव दिया। श्री बिरला ने सभी दलों से यह अपील की कि वे कार्यवाही को सुचारू और व्यवस्थित ढंग से चलाने में पूरा सहयोग करें। दिल्ली पुलिस ने स्पष्ट अधिवेशन के मद्देनजर नई दिल्ली जिले में किसी भी विरोध मार्च या जुलूस के लिए किसी ने कोई अनुमति नहीं मांगी है।

0: ने बताया है कि इस अधिवेशन में समान नागरिक संहिता यूसीसी विधेयक पेश किया जाएगा।
1: मध्य प्रदेश में समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी लागू करने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया गया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में कल भोपाल जिले के जगदीशपुर में कैबिनेट बैठक हुई। इस बैठक में यूसीसी विधेयक 2026 के प्रारूप को सर्वसम्मति से मंजूरी दे दी गई। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने कैबिनेट बैठक के बाद प्रेस ब्रीफिंग में कहा,
2: विवाह एक ही लागू होगा, दूसरा विवाह निषेध माना जाएगा। जब तक कि कानून सम्मत रूप से विवाह विच्छेद नहीं हो, तब तक दूसरे विवाह की परमिशन उसको नहीं रहेगी। उत्तराधिकारी का चयन भी उसी प्रकार से रहेगा। इस कानून के बाद सबको समान रूप से उत्तराधिकारी एक कानून से चलने के लिए बाध्यता रहेगी और एक उत्तराधिकारी में महिला पुरुष का भी अधिकार कम ज्यादा नहीं होगा, दोनों को समान होगा।
1: यूसीसी विधेयक के मुताबिक लिव इन में रहने वालों को एक महीने के भीतर पंजीकरण करवाना अनिवार्य होगा। साथ ही गांव स्तर तक शादी का रजिस्ट्रेशन जरूरी किया जाएगा। हालांकि आदिवासी समाज को इससे बाहर रखा गया है। गोयल, आकाशवाणी समाचार, भोपाल।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIR न्यूज हिंदी को फॉलो कर सकते हैं।
3: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज चिशिनाव में मोल्दोवा की राष्ट्रपति माइया संडू के साथ शिष्टमंडल स्तर की वार्ता करेंगी। राष्ट्रपति मुर्मू मोल्दोवा संसद के अध्यक्ष इगोर ग्रोसू से भी मिलेंगी और मोल्दोवा भारत संसदीय मैत्री समूह के सदस्यों से बातचीत करेंगी। इसके बाद वे एक व्यापार फोरम को संबोधित करेंगी। मोल्दोवा यात्रा के दौरान राष्ट्रपति मुर्मू भारतवंशियों से भी मिलेंगी। किसी भी भारतीय राष्ट्रपति की यह मोल्दोवा की पहली यात्रा है। श्रीमती मुर्मू इन तीन देशों मोल्दोवा, नॉर्थ मैसिडोनिया और रोमानिया की यात्रा पर हैं। यात्रा के दूसरे चरण में राष्ट्रपति कल नॉर्थ मैसिडोनिया पहुंचेंगी। अमरीका ने लगातार नवी रात भी ईरान पर हमले किए। अमरीकी सेंट्रल कमांड ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि ये हमले ईरान की उन सैन्य क्षमताओं को कमजोर करने के लिए जारी रहेंगे जिनका इस्तेमाल होर्मुज जलडमरू मध्य से गुजरने वाले वाणिज्यिक जहाजों और नाविकों पर हमले के लिए किया जाता है।
2: अमरीकी हमलों से पश्चिमी एशिया में तनाव और गहरा गया है। इससे पहले लगातार 8वीं रात हमलों के दौरान अमरीकी सेना ने ईरान के कई सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया था, जिनमें तटीय निगरानी,

0: सैनिकों पर हमले किए गए थे। पश्चिमी एशिया में 50,000 से अधिक अमरीकी सैनिक तैनात हैं। पिछले हफ्ते अमरीका ने ईरान के दक्षिणी प्रांतों में सैन्य ठिकानों और बुनियादी ढांचे पर कई हमले किए हैं। अमरीका का कहना है कि इन हमलों का उद्देश्य ईरान की उस क्षमता को कमजोर करना था जिससे वे हॉर्मुज़ जल डमरू मध्य में वाणिज्यिक जलपोतों के लिए खतरा पैदा करता है। समाचार कक्ष से अमीशा।
1: जम्मू कश्मीर के राजौरी और पुंछ जिले में कल बाढ़ और चट्टाने खिसकने से 11 लोगों की मौत हो गई। 8 लोग लापता हैं। कई लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। गृहमंत्री अमित शाह ने स्थिति की समीक्षा की है और केंद्र की ओर से हर संभव सहायता का आश्वासन दिया है। हिमाचल प्रदेश में दक्षिण पश्चिमी मॉनसून एक बार फिर सक्रिय हो गया है। हमारे संवाददाता ने खबर दी है कि राज्य के अधिकांश हिस्सों में चेतावनी जारी की गई है।
2: हिमाचल प्रदेश में मॉनसून की बारिश का दौर लगातार जारी है। बीते 24 घंटों के दौरान सबसे अधिक 82.2 मिलीमीटर वर्षा जिला कांगड़ा के धर्मशाला में दर्ज की गई। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने आज चंबा, कांगड़ा, मंडी और सिरमौर जिलों में भारी से अत्यधिक भारी वर्षा के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। वहीं ऊना, हमीरपुर, कुल्लू, शिमला और सोलन जिलों में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट तथा बिलासपुर, किन्नौर और लाहौल स्पीति जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। विभाग ने चेतावनी दी है कि इस दौरान भूस्खलन, अचानक बाढ़ आने और बादल फटने जैसी घटनाएं हो सकती हैं। आज सभी शिक्षण संस्थानों को बंद रखने के निर्देश जारी किए हैं। रितेश कपूर, आकाशवाणी समाचार, शिमला।
1: उत्तराखंड में रविवार सुबह से लगातार बारिश हो रही है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि बारिश से मैदानी और पहाड़ी दोनों इलाकों में जनजीवन पर असर पड़ा है।
3: भारतीय मौसम विभाग ने देहरादून, टिहरी, गढ़वाल और हरिद्वार जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। वहीं उत्तरकाशी, नैनीताल, चंपावत, पौड़ी और उधम सिंह नगर के लिए ऑरेंज अलर्ट और रुद्रप्रयाग, चमोली, अल्मोड़ा, बागेश्वर और पिथौरागढ़ में येलो अलर्ट जारी किया है। बारिश के अलर्ट के मद्देनजर आज ज्यादातर जिलों में सभी सरकारी और निजी विद्यालय तथा आंगनवाड़ी केंद्रों में अवकाश घोषित किया गया है। भारतीय मौसम विभाग के अलर्ट को देखते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सभी विभागों को सतर्क रहने के निर्देश दिए हैं। साक्षी सिंह, आकाशवाणी न्यूज, देहरादून।
1: उत्तर प्रदेश के लगभग सभी जिलों में मध्यम से भारी बारिश हो रही है। हमारे संवाददाता ने खबर दी है कि राज्य भर में जनजीवन अस्त व्यस्त है।
4: मुजफ्फरनगर जिले में भारी बारिश के कारण एक पुरानी इमारत गिरने से 4 बच्चों समेत 5 लोगों की मौत हो गई, 5 अन्य लोग घायल हो गए। भारी बारिश ने राज्य की राजधानी लखनऊ समेत कई जिलों में आम जनजीवन को प्रभावित किया है। मौसम विभाग ने राज्य के कई जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है और कहा है कि मौजूदा मौसम की स्थिति अगले 3 दिनों तक बनी रहने की संभावना है। अगले 24 घंटों में तराई के इलाके और बुंदेलखंड के कुछ हिस्सों में भारी बारिश होने की उम्मीद है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
1: स्पेन ने फीफा विश्व कप जीत लिया है। न्यूयॉर्क न्यूजर्सी स्टेडियम में फाइनल में 90 मिनट तक संघर्षपूर्ण और रोमांचक मैच में कोई गोल नहीं हो पाया। स्पेन के फेरान टोरेस ने अतिरिक्त समय में गोल करके अपनी टीम को 1-0 से जीत दिला दी।
5: फीफा फुटबॉल विश्व कप का इतिहास लिखा जा चुका है। स्पेन ने दूसरी बार पुरुष फीफा विश्व कप अपने नाम कर लिया है। इससे पहले स्पेन ने 2010 में खिताब जीता था। इस जीत के साथ स्पेन एक ही समय में पुरुष और महिला फुटबॉल विश्व कप विजेता पहला देश बन गया है। इस हार ने अर्जेंटीना और लियोनेल मेसी के शानदार दौर का भी अंत कर दिया है। मेसी ने अपनी टीम को 2022 फीफा वर्ल्ड कप और 2021 तथा 2024 में कोपा अमेरिका का खिताब जिताया था। टोरेस फीफा विश्व कप फाइनल में गोल करने वाले 5वें ऐसे खिलाड़ी बने जो मैच के अंतिम समय में किसी अन्य खिलाड़ी के स्थान पर टीम में खेले। 48 टीमों के साथ ये अब तक का सबसे बड़ा फीफा विश्व कप था। ये टूर्नामेंट अमेरिका, कनाडा और मेक्सिको में खेला गया। और अगर बात करें पुरुष क्रिकेट की तो इंग्लैंड ने लंदन के लॉर्ड्स में तीसरे और निर्णायक एक दिवसीय मैच में भारत को 27 रन से हराकर श्रृंखला 2-1 से जीत ली है। इंग्लैंड ने निर्धारित 50 ओवर में 3 विकेट पर 387 रन बनाए। भारतीय टीम 7 विकेट पर 360 रन ही बना सकी। इससे पहले भारतीय टीम ने साउथहैम्पटन के रोज बाउल में पहला मैच जीता था। दूसरा मैच कार्डिफ में मेजबान टीम ने जीता।
1: ये समाचार हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
6: धन्यवाद मुनीश। देश की राजधानी से प्रकाशित सभी हिंदी अखबारों के मुख्य पृष्ठ पर सबसे ऊपर आज से शुरू हो रहे संसद के मॉनसून सत्र और तेज बारिश के कारण जम्मू कश्मीर और लद्दाख में प्रभावित जनजीवन को पटरी पर लाने के लिए जारी बचाव और राहत अभियान की खबरें दिखाई देती हैं।

0: ने जम्मू कश्मीर के साथ उत्तराखंड और नागालैंड में भारी बारिश से मची तबाही का समाचार सचित्र प्रकाशित किया है। साथ ही आज से शुरू हो रहे मानसून सत्र से पहले आयोजित सर्वदलीय बैठक को शीर्ष समाचार बनाते हुए लिखा है, सर्वदलीय बैठक में राम मंदिर चढ़ावा चोरी, पेपर लीक और एथेनॉल जैसे मुद्दों पर चर्चा। जापान ओपन जीतने वाली पीवी सिंधु की तस्वीर भी कई अखबारों ने पहले पन्ने पर छापी है। दैनिक ट्रिब्यून ने खबर को शीर्षक दिया है, पीवी सिंधु ने जापान ओपन जीतकर रचा इतिहास। राजस्थान पत्रिका ने इस खबर को शीर्षक दिया है, पीवी सिंधु ने बैडमिंटन में खत्म किया खिताबी सूखा। लोकसत्य ने भारत के पहले शब्द संग्रहालय का कोलकाता स्थित राष्ट्रीय पुस्तकालय परिसर में उद्घाटन करते केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह का चित्र प्रमुखता से छापा है। पत्र ने दिल्ली हाईकोर्ट की इस टिप्पणी को भी खबर बनाया है, सोनम वांगचुक को इलाज के लिए उठाना गलत नहीं। दैनिक भास्कर का शीर्ष समाचार है, वांगचुक को सरकारी अस्पताल ले जाना मनमानी नहीं हाईकोर्ट। हिंदुस्तान के ने निजी क्षेत्र के रॉकेट विक्रम 1 के सफल प्रक्षेपण को अपने संपादकीय लेख का विषय बनाया है। शीर्षक दिया है, वैज्ञानिकों को बधाई।
1: और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। संसद का मॉनसून अधिवेशन आज से शुरू हो रहा है। सरकार ने सदन के सुचारू कामकाज के लिए सभी राजनीतिक दलों से सहयोग का आग्रह किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज चिसिनाओ में मोल्दोवा की राष्ट्रपति माया संडू के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता करेंगे। मध्य प्रदेश मंत्रिमंडल ने समान नागरिक संहिता विधेयक को मंजूरी दे दी है। जनजातीय समुदायों को इसके दायरे से बाहर रखा जाएगा। जम्मू कश्मीर के राजौरी और पुंछ जिलों में अचानक बाढ़ और भूस्खलन से 11 लोगों की मृत्यु, 8 लोग लापता। अमरीका ने नवी रात भी ईरान पर हमले किए और स्पेन ने फीफा विश्व कप जीत लिया है। खिताब का बचाव करने उतरी अर्जेंटीना को 1-0 से हराया। और इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम शगुन चोपड़ा। द हेडलाइंस। मॉनसून सेशन ऑफ पार्लियामेंट बिगिंस टुडे। गवर्नमेंट सीक्स कोऑपरेशन ऑफ ऑल पॉलिटिकल पार्टीज फॉर स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ पार्लियामेंट। President Draupadi Murmu to hold delegation-level talks with the Moldovan counterpart Maya Sandu in Chisinau today. Madhya Pradesh Cabinet approves Uniform Civil Code Bill, tribal communities to be kept outside its purview. Flash floods and landslides claim 11 lives in Rajouri and Poonch districts of Jammu and Kashmir, 8 people still missing. U.S. strikes Iran for 9th night.

8:30 हुए हैं। प्रस्तुत है लोक संगीत का कार्यक्रम। आज इस कार्यक्रम में कलाकार हैं गंगाबाई गिराम, मदन मेहर और साथी। पहले सुनिए गंगाबाई गिराम और सहेलियों के स्वर में ये गीत।

गंगाबाई गिड़ाम और सहेलियों के स्वर में अभी आपने सुना ये गीत। लोक संगीत के कार्यक्रम में आज कलाकार हैं गंगाबाई गिड़ाम, मदन मेहर और साथी। लीजिए अब सुनिए मदन मेहर और साथियों के स्वर में ये लोक भजन।

0: अभी आप सुन रहे थे लोक संगीत का कार्यक्रम। आज इस कार्यक्रम में कलाकार थे गंगाबाई गेराम, मदन मेहर और साथी। यह आकाशवाणी का रायपुर और सरायपाली केंद्र।
1: मीडियम वेव 396.82 मीटर अर्थात 756 किलोहर्ट्ज़ और एफएम बैंड 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी का जगदलपुर केंद्र है। सुबह के 9 बजे हैं। प्रस्तुत है।

मोती ए जीवन आय सोनार रूपा मोती जुर लोक मना ए जीवन आय धोंगार खेंदा जोय धरले ढकढकी जायसी ए जीवन आय पानील थीपा आसन ए जीवन आय पानील थीपा आसन

0: गला आचे मांतर बदल बार ताकत नहीं आए। डोंगा ने काना आचे मातर सांग के ना सके। डोंगा ने काना आचे मांतर सांग के ना सके। बोली देवास मुई जानी ए गोटर उल्टानी के। बोली देवास मुई जानी ए गोटर उल्टानी के। काय टकाचे ये बोलवाए कि दुख सह के ना सके। लाजे होई केवे हाय रेला की सुरता ना जाए। लाजे होई केवे हाय रेला की सुरता ना जाए। हासानी थुकानी असन जाके सह के ना सके। मोर सरासरी कविता है काम बुता झटके सरा की राती झटके आईसी। काम बुता झटके सरा की राती झटके आईसी। कर सकारे आपनार बुता जेबे रोंडा ओसले भिजी रहसी। जेबे रोंडा ओसले भिजी रहसी तेबे ना सोयते रहा। तेबे ना सोयते रहा जेबे उजर भागते जायसी। जेबे उजर भागते जायसी होइसी बेर जोयर घर। जेबे उजर भागते जायसी होइसी बेर जोयर घर। बुता कर की राती झटके आयसी काम ने तोर। बुता कर की राती झटके आयसी काम ने तोर। मैं मत कर की राती झटके आयसी। मैं मत कर की राती झटके आयसी मुंडे बेदार घाम ने बल कर। मुंडे बेदार घाम ने बल कर हाय समय आए नंगत बेरा। हाय समय आए नंगत बेरा उगाए नारा खुब्बे मैं मत कर। उगाए नारा खुब्बे मैं मत कर। गोटक गोटक समय असन की जार काई महांग नहीं। गोटक गोटक समय असन की जार काई महांग नहीं। जेबे उजर बागते जायसी होइसी बेर जोयर घर। जेबे उजर बागते जायसी होइसी बेर जोयर घर।
1: हाँ तो देखा ये भत्री कविता पाठ के आम की सुनातर रा श्री सुनील कुमार निसार ये कविता ने बोले कई कसन आमचो जीवनाचो सीख रली। एदाय सुना ठसा आर ये ठसा के संचालन कर सोत श्री राम सिंह कश्यप।
2: दादा दीदी मन आमचो बस्तर बलो ने खूबे सुंदर आए। कसन बलो ने आमचो बस्तर के नहीं बाहरी चो लोग मन बल दखतो काजे और एता चो रीति रिवाज के जानतो काजे कितलो लोग मन रोजे बर कसन एसोत। कसन बलो ने आमचो बस्तर ने काय सुंदर रान बन और काय सुंदर एता चो ठान मन और ए बस्तर ने कई प्रकार चो एता चो बोली होय से और एता चो बोलो ने रीति रिवाज बोलो ने सपाय बाटे अलग अलग और काय सुंदर होय से। दादा दीदी मन उसने देखा आमचो बस्तर चो रीति रिवाज आमचो बस्तर चो तीज तिहार ये सपाय के आम के भूलक तोर नो है। कसन बोलो ने यही रीति रिवाज और यही परंपरा ने आमचो बस्तर के जान सोत और दूसरा लोग आमचो बस्तर के दख्तो काजे ऐसोत। जसन मैं बोल रहे कि आमचो बस्तर ने कई प्रकार चो बोली मन रहे से हल्वी भतरी घोंडी और बल बोली होय से उसने देखा। दादी दी मन आमचो बस्तर ने जसन आमी कई बले काम बुता करूं से नाले बिया होय से बोलो ने कई बले बुता बनाऊ सुदल लाए गोटक बोलो ने हाँसी खेली बोलो ने उनमन के गोट बात ने बोलू से कसन बोलो ने एक रिस उन बोल तो बोलू नहीं हुए उन्हें कहा हाँसी खेले ने आमी कहीं ना कहीं आमी बोलू से उनके बोलू से आमी ठसा। तो यही ठसा के आजी सुना तो आज हम चल अमर लासोत ये मनात संतोष कुमार बघेल अंजना नाग और पूरन सिंह कश्यप और उनमन संगे मैं आए राम सिंह कश्यप आमी बेर नहीं करू और आजी चो कार्यक्रम ने मूर करू ठसा। तो दादा दीदी मन सबले पहल नहीं मई मूल कर आमचो बाड़ी ने बुनलू खेड़ा। आमचो बाड़ी ने बुनलू खेड़ा दुआरी इली छाय। आमचो बाड़ी ने बुनलू खेड़ा दुआरी इली छाय छाय दकुन दकुन हिंडते रहले अल्टी ओली
3: आमचे घरे सगाईला। आमचे घरे सगाईला चुचाय सुकलो बांगा। चुचाय सुकलो बांगा एबे काजे थेबा तुमे। एबे काजे थेबा तुमे बियान के होते कुकड़ा भाजा।
2: बोलो ने ये बोलते रहे ने कुकड़ा भाजा बोले पाचे का संगव रहे ने। देख ये तू काय नगत ठसा के ऐसा

0: नालीस आले दाक उसने और भले आसे ये मन के भले आले सुना
1: आले मुझे लग भले सनी ठसा आसे
0: आले
1: बरसा बेरा चो सुरु तिहार
0: हाँ
1: बरसा बेरा चो सुरु तिहार अमुस लागे से
0: हाँ
1: दखा काय अमुस लागे से
0: हाँ
1: बिहानत ले झिमिट झिमिट पानी मारे से
0: हाँ
1: पानी मारे से ए दे जोगनी कीड़ा बुग बाग हासुन नाचे से
0: बोल रहे जोगनी कीड़ा काय सुंदर रहे
2: से
1: दे बुग बाग होन हासुन बोले नाचे
0: से उन मन के देखो नाम के बोला नाच चुकला मन करे से
3: अलस नि मतलब बल्ठा सा आतन
1: आले
3: गोटक थारिन दुई अंडा
1: हाँ
3: गोटक सीतर गोटक गरम
0: कसन
3: कसन कसन बोले फिर दक गोटक माई चुबल दुई जान पीला मन रहे से गोटक खिनिक धीरान रहे से और गोटक खिनिक चांट रहे तेज रहे
0: सत्य बोल ली दादा उसने मैं बोले और गोटक मारे था माता गुड़ी चो बोतलो बोकड़ा माता गुड़ी चो बोतलो बोकड़ा नाजुन थाके तू के नी बोल ले बोलूं मैं कोके
2: रंग रंग चो पिलपिली रंग रंग जो पिलपिली सब जो मन के भाई से फूलने बसुन रस के चौकुन फूलने बसुन रस के चौकुन सब जो मन के ललचाए से
3: एकदम
2: ललचाए जन क्या और लोग बोला दुकुन बाती लालच बोल
1: जैसे बोलो ललचाए से उसनी मोके बोले ठसा चो और लालच
2: आलेसनी
1: गोटो कहा से बोले से
0: मैं करा
1: बस्तर चो बस्तरिया भाई मन बस्तरिया भाई मन काके नी कर अभिने मारून पेटून खाऊन गेला अंग्रेज चो दिने
0: बोलन तो आम चो बस्तर के बोलन ने कोनी बोले डरा तोलन मारून पेटुकलाई तो होय
1: देचिने
0: काय
3: लोग बोले लमरा अंदर करना अदक नहीं बोतलक नहीं सगा घरे गेल काय मतलब
2: सत्य बोली
3: मान सम्मान्य उता दखलो पाच बल भूतलक निकरावत ना दख निकरावत उता फिर हम तो सगा घर गेलो भी काय
2: मतलब
3: मान सम्मान आगे हम तो आई दीदी मनुष्य करतर लोग
2: सगा घर चल कोंडक पानी ना तो काय मतलब काय
0: सत्य बोलीस दख संतोष दादा तुम्ही ठसा पण की तो सांगलास ने आल तक उसने और बोला से आले के बोले मैं बोल सुनाइस ना तोका पालचो रोपा डांडा तोका पालचो रोपा डांडा बारी गेली चेर
2: बारी गेली चेर
0: बारी गेली
2: चेर
0: बिया ओलीस गोन ओलीस
1: हाँ
0: छांडरी ओलीस फेर
2: फेर छांडरी तो तू बोल डांडा भी तिक सांग लिस ने मीठा डांडा मीठा डांडा तीरका तेतर
1: तीरका तेतर
2: तीरका तेतर मीठा डांडा तीरका तेतर चेहरे से छेरी
1: चेहरे
2: से छेरी जतर खता
0: बोली तो मीठा और तीरका के बोलो नहीं खार लो तो चेहरे चेहरे दे देने
1: चेहरे से जतर खता आले असनी गोटो ठसा और सुनू फिर धान सौकार ठाने बोल लो धान सौकार ठाने बोल लो नियाय बाबू धान धान सौकार ठाने बोल लो नियाय बाबू धान नांगर आना बेठिया करा तेबे पावा से धान
3: पैसा मांगले कौन देव कौन यू कई बूता करता ना तेबे तुक मीरे दुई पैसा चाउर बल ना धान
0: उसने आके तक दा दे मन बोलवात की मसा गच्चो मूसा मार बोलन बिना मसा गच्चो ना आलो कसन मीरे दे आम के कहीं बोले काम बूता करूं से तो आम के कड़ी मेहनत मसा गत करू पड़े से
3: उनकी तो बोलवात ना आगे रेली सोली पहली एबे होली किलो आगे रेली सोली पहली एबे होली किलो खूबे धान के न्यू रेले मोयन पड़ के सेठ ठगुन दी सेठ सौकार होता कसन
2: ये भी बस ठग सत किलो ने
3: अगर सेठ सौकार कम ठगते रहता मन पड़ना
2: ये भी बस ठग सो
1: हिंदुस्तान ने जन्म कर लू हिंदुस्तान ने जन्म कर लू जन्म भकवा रलू
2: जन्म भकवा
1: दादा दीदी जन्म भकवा रलू बस्तर ने स्कूल हो तो के एबे चतुर

0: Terulu.
1: चतुरु पढ़े से बोलन पढ़ा लिखा बोलन तो चतुरु खोज पढ़े से दख दख अंजना बहन काय रचिया ये जो ठसा के तुम्ही सुनालास दख उसने मतलब बोला और पढ़ा लिखा भी तीना से लेके बोला ले सुनो सियान पढ़ा जुआन पढ़ा पढ़ा धंगड़ी मन सियान पढ़ा जुआन पढ़ा पढ़ा धंगड़ी मन नी पढ़ले बसानी बुलवात नी पढ़ले बसानी बुलवात पढ़ले भारी मान और आमच लगे पूरन सिंह दादा असे आले आले तू बल मुर करना
2: बस्तर चो नुआ तियार बस्तर चो नुआ तियार साल ने हो से
1: एकार
2: साल हो से नानी पीला के चुमुन देव से नानी पीला के हमें चुमुन देव से सियान सजन के करु से जुआ सियान सजन का भी करु से जुआ
3: सत्य सत्य सत्य मंत्र आम चो दका हम चो बस्तर के दका दादा दीदी रंग रंग चो पिंदा ओड़ा रंग रंग चो नाचा कसन रंग रंग चो पिंदा ओड़ा रंग रंग चो नाचा तिहार बाहर लोग लेने नी भूल को देसी के चाउर भाजा
1: चाउर
3: भाजा इतना नोआ बीता बोले हम चो पाठन के हम चो गोटो व्यंजन आए बोले आम ठोली आली कई कई होली तो हम चो व्यंजन आए हम बस्तर चो
1: सत्य बोल ली तक और उसने तक अंजना बहन मन लग बला सले
0: पढ़ूक लिखूक सीखा तुम्हें राज के चलावा पढ़ूक लिखूक सीखा तुम्हें राज के चलावा जुहार बाबू बोले को नी मुंड के हलावा
1: दादा दीदी मन पढ़ा लिखा रहो रसत नहीं तो उन मन के मान सम्मान ने कंडिक पूछ पचारा बोल कर सकते और जुहार उन मन के कर सकते
2: जुआर बोल नमस्कार बोलन बोल कुन कुन मूड के बोल हला
1: सत्य बोलली स अंजना मोहन उसने अंत लगे तक दादा लगा से ए दादा तुम बोल मुर करा ना
3: तो देखा आमचो बस्तर खूबे सुंदर सबले पूरे हिंडे से दादा दीदी सबले पूरे हिंडे से बड़े बड़े बाठोली रिक्शा मोटर जोड़ा जोड़ी अदाय ठेबा बस्तरिया दादा दीदी कोना कोना ने रेल अमरे से
1: देख दादा दी मन काय रसिया दख बोलो ने ठसान बोले कई प्रकार चो आम के जान तो गोट सिख तो गोट मन बोले रह से तो असन गोट मन के आम के लेख कर तराय और दख ए आम चो जन बस्तर चो परंपरा बोल रह से ने तो ये मन के आम के भूलक तोरनो आए दख आजी चो कार्यक्रम ने ठसा के आम चलो तुम चलो सांगते रहोत ये मन रहोत संतोष कुमार बघेल और अंजना नाग और पूरन सिंह कश्यप और मैं बोलो ने राम सिंह कश्यप इतरो आजी चो जो कार्यक्रम रहे ये मन के सुनाला दख एना आम चो जातो समय हो से तो विदा दिया आजी चो कार्यक्रम सुन तो सपाय दादा दीदी मन के आमी सपाय करूं से
4: जुआ।

कोनी लगे पानी जो पता नहीं चले। सब जानवर ले ए जानवर के भारी आपत्ती ली और मार पड़ ली। कसन बोलें हुंचो सुपासन कान मुंगरी डेरी असन पाए और मुसर मुंडसन लेंगड़ी पर हुंचो भजन बोले आए। लाई फुटलो असन गर्मी मांतर गोटक बूंद बोले पानी नहीं आए। हाथी मंचो मुखिया हुंचो नाम रहे बड़े दांत। खुबे चिंता फिकर पड़ ली और सोचे से कि पानी चो जुगाड़ कसन कर ले होए दे। नहातर तो दूर दूर पीतर बोले मुश्किल होली से। उदली दाए गोटक हाथी हुन लगी लो और बोले से मुखिया के हुजूर मके पानी पानी मालूम होए से कि पानी चो कौन दिशा ने मिरे दे। समुद्र लेंगड़ा बाटे पानी मिरतो असन आसे। आमचो संगवारी चो गोट के सुनुन मुखिया बड़े दांत छाती फुलान सांस धरलो और आपलो गोहड़ा चो सपाय हाथी मन के हुताले समुद्र लेंगड़ा बाटे जाऊ बोललो। जोन हाथी पानी मिरतो गोट के सांगते रहे हुन हाथी पूरे पूरे जाए से। बाकी हाथी मन बोले उनचो पाट पाट जहाज जाए सोत ए रान हुन रान होते हाथी मन थकुन गेला। डंडी सुस्ता तो काजे गोटक हाथी बोले से। सपाय हाथी हुन हाथी चो गोट के सुनुन थेबला और डंडी सुस्ताला हुनी लगे गोटक सियान बुड़गा हाथी के बड़े असन झरना दखा दिली। सपाय झरना लगे अमरला और पानी के दखुन इतलो हरी खोला जोर जोर ले गरजुक मुरियाला। पानी पीउन पानी भीतरे ढबरुक धरला और पानी ने पीला हाथी मन बोले खेलुक मुरियाला। खुबे दायले पानी थाने रोन पासे पानी ले निकरला। सपाय हाथी पेट भर पानी पीला और निकरला। आप लोग मंद मस्त रेंगाने जाते रोत। हाथी घोड़ा जोन बाटले गेला हुन बाटले भूई ने मूसा मंचो भील बोले रे। हाथी मंचो पायले खुबे असन मूसा मंचो मूसा मन दबुन कुचलुन मरला। जोन बाकी बाचला हुन मन के फिकर धरली कि कसन ले हाथी मंचो ले जीव के बचा तो राय बोलून सोच विचार करे सोत। और सपाय मूसा मन हाथी मंचो मुखिया बड़े दांत लग गेला और गुहार करला। मूसा मंचो मुखिया बोले से हुजूर तुम चो ये तो जातो बाट के आमचो घर भील लगेले बदला। असन बोलून गोटक सियान मूसा फिराद मांगलो आमचो पुरगा पार्टी यही जगह ने रते यूं से आमचो पीढ़ी पुरका चो बना लो घर आसे। तुमन मन गोहड़ा गोहड़ा ये बाटले ये तो जातो रुआस तो खुबे आमचो लोग तुमचो पाए ने दबुन मरेसत। तुमके बिनती करू से ए दाए ये तो जातो बाट के बदला ना ले आमी उपरता मरुन दे। आमी नानी जरूर आओ मांतर के भी बोले तुमचो काम यू दे। असन बोलून गोटक सियान मूसा बोललो। असन गोट के सुनून गोटक हाथी हासलो और बोले से नानी असन मूसा आमचो काय काम ये ऐसे आमचो इतलो डोंगरी असन दे पाए हाथी के मूसा चो काय काम। मांतर हाथी मंचो मुखिया बड़े दांत खुबे समझदार और दयालु रहे हुन बोले से तुम्हें चिंता फिकर नी करा मैं हाथी मन के बाट बदलें दे बोले से। असन गोट के सुनून मूसा मंचो मुखिया बोले से तुमचो खुबे कृपा आसे आमचो लायक कई बोले काम पड़ लेन याद करा आमी ये उन्दे बोलून मूसा मन बोले सोत। हाथी मन और मूसा मन आप लोग काम काज बाटे गेला। खुबे दिन होली नदी झील कटा हाथी मन और मूसा मन हंसी खुशी में रहते रहत। गोटक रोज जो असन हाथी मन झील झरना बाटे जाते रहत। उदली दाए गोटक के हाथी चो पाए ने सिरका फांसी धरली। हाथी जोर जोर ले कोलार करुन चटपटाउन थाकुन गेलो फांदा ले फसुन और कोनी हाथी बोले हुनके निकराव नी सको। हाथी मंचो मुखिया बड़े दांत समझ लो असन करनी कोनी शिकारी चमन कर लासोत। फांदा के निकराव नी होए से सांझ होते जाए से फांदा ने लटक लो हाथी के छाड़ून आप लो रतो लगे गेला। रात भर विचार करे सोत कसन आमचो संगवारी के फांदा ले छंडावा हुनी मौका ने शिकारी मन फांदा लगी गेला। फांदा ने हाथी के दखुन हरी खोला हाथी तो मरलो असन थाकुन रहे काय करतो। शिकारी मन चारो बाटले पाए के बांधला और हुनके हुताले नीला। नेउन डोंगरी कटाचो एकटा बोर्ड रुके बांधला और आप लोग

0: आपलो घरे गेला। ए बाटे बड़े दांत संगे सपाय हाथी मन सोच विचार करे सोत, मात्र सपाय परेशान हो रोत। तेबे बड़े दांत के मूसा मंचो गोट के याद दिली, हाथी मन के भी सपना ने बोले नी सोचुन रला, मूसा मंचो बोले मदद धरु पड़े दे। हाथी मंचो मुखिया बड़े दांत मूसा मन लगे खबर पटालो और पूरा घटना चो जानकारी दिलो। खबर सुनुन मूसा मंचो मुखिया संगे सपाय मूसा मन हाथी मन लगे इला, हाथी मंच मुखिया लगे अमरला, बड़े दांत के जुहार करला और विपत्ति की पूछला। हाथी मंच मुखिया सपाय घटना के सांगलो सुनुन मूसा मंच मुखिया पूछे से आमचो मित्र के कौन थाने बांधला से हुन जगह ने आमके निया, आमके जसन बोले काम पड़े दे करुन दे। सपाय मूसा मन हाथी मंचो पाठ गुते बसला और राती बेरा डोंगरी कटाचो एकटा बॉर्डर के गेला। शिकारी मन बांधलो हाथी लगे नीरोत, उदली दाए सपाय मूसा मन बांधलो डोरी के आपलो छुरा आसन दांत ने गोंदा गोंदा करला, बड़े मसागत ने सपाय बांधलो डोरी के कतरला। हाथी के बांधलो डोरी छिड़ली, हाथी के झटपट उठाला और हुनके हुताले झटके झटके सपाय रान बाटे नीला। हुनी हाथी रहे जोन मूसा मन के हासुन नानी समझुन रहे, खुबे लाज पड़लो और मूसा मंचो मुखिया के माफी मांगलो और मूसा मन संगे मीत बांधलो। दख्तो ने नानी होले बोले कोनी नानी नी होत, बड़े दख्तो ने हाथी के डोरी ने बांधन रोत हुनके काई करुक नी सकला। मूसा मन नानी आत्मांतर आपलो बुद्धि ले हिम्मत करून डोरी के कतरला और हाथी के डोरी ले छंडाला। आजकल जो दिन दिन ने नानी बड़े गरीब अमीर सपाय गोटकी संगे मित्र भावन रतोराय के भी बोले कोची बोल काम पड़ू खोए दे, नानी बड़े सपाय संगे मिलुम निसुन नगत रतोराय। मचो कहानी एताय सरे से।
1: हाँ तो देखा आसो वती कश्यप चु कहनी के आमी सुनलू, देखा एता बोले कितलो बोले ने सीख रली जसन की आपन मन कहनी ने सुनलास मूसा आरु हाथी मंचो कहनी, बोले ने हाथी कितलो बड़े भारी रहे से भरसम रहे से आरु मूसा बल्ले नानी असन रहे से, मांतर ये मंजी ने आम के जीव तो काजे सब चो संग हो तो जरूरी है, नानी हो कि बड़े हो, गरीब हो कि सौकार हो, दुखी हो कि सुखियार हो, बले ने सपाय मिलुन मिसुन बाती रलो ने बले ने कई चीपा अटकनी इली बल्ले ने आम के बले ने नानी लोग बोले संग देव सको तारू, बड़े लोग बोले संग देव सको, दुखी लोग बोले संग देव सको आरु, सुखी लोग बोले संग देव सको, गरीब लोग बोले संग देव सको आरु, सौकार लोग बोले संग देव सको, ये सपाय चो संग ने आम चो जीवना चले से। तो देखा असनी सुनते रहा आमचो लोक साहित्य पत्रिका मोचो माटी के, तो सपाय सुनतो लोक के मोचो बाटले खूबे खूबे सेवा जोहार।

0: अभी आप सुन रहे थे लोक साहित्य पत्रिका मोचो माठी, संपादक थे बलवीर सिंह कच्छ।
1: सुनो ना।
2: हाँ?
1: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
2: तो रोका किसने है? हाँ?
1: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
2: मुझसे।
1: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
2: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
1: पर उससे मेरा क्या फायदा?
2: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुंच जाओ।
1: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
2: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 870-001-4242।
1: ओ 870-001-4242। लो अभी फोन लगाता हूँ 870-001-4242 पर।
0: आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। सुबह के 9:30 हुए हैं। पेश है कार्यक्रम एक ही फिल्म से। श्रोताओं आज की फिल्म है ओमकारा। सुनते हैं फिल्म का पहला गाना।

श्रोताओं, फिल्म ओमकार सन 2006 में प्रदर्शित हिंदी फिल्म है। इस फिल्म का निर्माण किया है कुमार मंगत पाठक ने, निर्देशन किया है विशाल भारद्वाज ने, पटकथा लिखी है विशाल भारद्वाज, रॉबिन भट्ट और अभिषेक चौबे ने, संवाद लिखे हैं विशाल भारद्वाज ने। आइए सुनते हैं फिल्म का अगला गाना, रेखा भारद्वाज और राकेश पंडित की आवाजों में।

ओंकारा के गीत लिखे हैं गुलजार ने, गीतों को संगीतबद्ध किया है विशाल भारद्वाज ने। फिल्म के गाने बेहद पसंद किए गए। आइए सुनते हैं फिल्म का अगला गीत सुरेश वाडकर की आवाज में।

इसी के साथ ही आज का एक ही फिल्म से कार्यक्रम अब समाप्त होता है। मीडियम व्यू 396.82 मीटर अर्थात 756 किलोहर्ट्ज और एफएम बैंड 100.1 मेगाहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का जगदलपुर केंद्र है। आप हमारे कार्यक्रम मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी सुन सकते हैं। सुबह के 9:55 होने वाले हैं। प्रादेशिक समाचार अब हम आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से रिले कर रहे हैं, कृपया प्रतीक्षा करें।

और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। संसद का मानसून सत्र आज से शुरू होगा। रामनामी समुदाय पर आधारित फिल्म को सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री का राष्ट्रीय सम्मान मिला। मुख्यमंत्री ने इसे छत्तीसगढ़ के लिए गौरव का विषय बताया। और मौसम विभाग ने आज मध्य और उत्तर छत्तीसगढ़ में कुछ स्थानों पर भारी से अति भारी बारिश होने की चेतावनी दी है। अब समाचार विस्तार से। संसद का मानसून सत्र आज से शुरू होगा। ये सत्र अगले महीने की 13 तारीख तक चलेगा। सत्र के दौरान कई महत्वपूर्ण विधेयकों मानसून सत्र शुरू होने से पहले सरकार ने कल सर्वदलीय बैठक बुलाई। बैठक की अध्यक्षता रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने की। बैठक में संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू, राज्यसभा में सदन के नेता जगत प्रकाश नड्डा, संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और डॉ एल मुरुगन भी उपस्थित थे। राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के तहत परिवहन क्षेत्र में हरित हाइड्रोजन के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए 12 पायलट परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है। इसके अंतर्गत 70 हाइड्रोजन चलित भारी वाहनों को तैनात किया जाएगा और 16 हाइड्रोजन रिफ्यूलिंग स्टेशनों द्वारा इन्हें सहायता प्रदान की जाएगी। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि ये पायलट परियोजनाएं देशभर के कई रणनीतिक मार्गों को कवर करते हुए भारत के राजमार्गों और शहरी परिवहन गलियारों में शून्य उत्सर्जन गतिशीलता का मार्ग प्रशस्त कर रही हैं। रामनामी समुदाय के जीवन, आस्था और सांस्कृतिक विरासत पर आधारित डॉक्यूमेंट्री फिल्म रामनामी को 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री का सम्मान मिला है। इसका निर्देशन प्रसिद्ध फिल्मकार भरत बाला गणपति ने किया है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने डॉक्यूमेंट्री फिल्म रामनामी को सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री का राष्ट्रीय सम्मान मिलने पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए इसे पूरे प्रदेश के लिए गौरव का विषय बताया है। नारायणपुर जिले में एक दिवंगत आरक्षक के परिवार से 19 लाख रुपए की वसूली के आरोप में पुलिस ने तत्कालीन थाना प्रभारी सुरेश चंद्र यादव को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया है। इस मामले में एक अन्य आरोपी फरार है, जिसकी तलाश जारी है। मिली जानकारी के अनुसार सड़क दुर्घटना में डीएसएफ आरक्षक की मृत्यु के बाद पत्नी को मिले 1 करोड़ रुपए के दुर्घटना बीमा दावे में कथित अनियमितता और अवैध वसूली की गई थी। मौसम विभाग ने आज मध्य और उत्तर छत्तीसगढ़ में कुछ स्थानों पर भारी से अति भारी बारिश होने की चेतावनी दी है। वहीं प्रदेश के अधिकांश स्थानों पर गरज चमक के साथ बारिश होने की संभावना व्यक्त की गई है। मौसम विभाग के अनुसार उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश और उससे लगे दक्षिण छत्तीसगढ़ के ऊपर एक चक्रवाती घेरा बना हुआ है। इसके असर से प्रदेश में बारिश की गतिविधियां तेज हुई हैं। पिछले 24 घंटों के दौरान प्रदेश के अधिकांश स्थानों पर बारिश हुई है। वहीं एक दो स्थानों पर भारी वर्षा दर्ज की गई है। जशपुर जिले के सन्ना थाना क्षेत्र के कोदोपारा

0: में खेत की जुताई के लिए जा रहा ट्रैक्टर अनियंत्रित होकर गड्ढे में पलट गया। हादसे में ट्रैक्टर चला रहे वाहन चालक सहित दो लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर में चालू शैक्षणिक सत्र के लिए बीटेक कृषि अभियांत्रिकी और बीटेक खाद्य प्रौद्योगिकी पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए ऑनलाइन यूजी काउंसलिंग के प्रथम चरण के पंजीयन की आज अंतिम तिथि है। विश्वविद्यालय के अनुसार पात्र अभ्यर्थियों की प्रावीण्य सूची 23 जुलाई को जारी होगी, जबकि 24 से 30 जुलाई तक सीट आवंटन, दस्तावेज सत्यापन और प्रवेश प्रक्रिया पूरी की जाएगी। प्रवेश से संबंधित विस्तृत जानकारी विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर उपलब्ध है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। संसद का मानसून सत्र आज से शुरू होगा। रामनामी समुदाय पर आधारित फिल्म को सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री का राष्ट्रीय सम्मान मिला। मुख्यमंत्री ने इसे छत्तीसगढ़ के लिए गौरव का विषय बताया। और मौसम विभाग ने आज मध्य और उत्तर छत्तीसगढ़ में कुछ स्थानों पर भारी से अति भारी बारिश होने की चेतावनी दी है। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप 11:55 पर सुन सकते हैं। नमस्कार।
1: मीडियम वेव और एफएम बैंड पर ये आकाशवाणी का जगदलपुर केंद्र है। सुबह के 10 बजे पेश है कार्यक्रम गुलशन। आज इस कार्यक्रम में हम लेकर आए हैं पुराने फिल्मी गाने। कार्यक्रम का पहला गीत हम आपको सुना रहे हैं मोहम्मद रफी की आवाज में फिल्म इशारा से। गीतकार हैं मजरूह सुल्तानपुरी, संगीतकार हैं कल्याण जी आनंद जी।

अगला गीत हमने लिया है फिल्म इंतकाम से लता मंगेशकर की आवाज में। बोल लिखे हैं राजेंद्र कृष्णन ने, संगीतबद्ध किया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

श्रोताओं, गुलशन कार्यक्रम में आज आप सुन रहे हैं पुराने फिल्मी नगमे। अगली पेशकश है फिल्म हीर रांझा से मोहम्मद रफी की आवाज में। बोल कैफी आजमी के हैं, धुन तैयार की है मदन मोहन ने।

लता मंगेशकर की आवाज में अब पेश है फिल्म हंसते जख्म का गीत। गीत लिखा है कैफी आजमी ने, सुरों में पिरोया है मदन मोहन ने।

अब हम आपको सुना रहे हैं किशोर कुमार का गाया गीत। फिल्म का नाम है हम सब उस्ताद हैं। शब्द रचना है असद भोपाली की, संगीत से सजाया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

इस गीत के साथ ही आज का गुलशन कार्यक्रम अब समाप्त होता है। गुलशन कार्यक्रम में आज हम आपको सुना रहे थे पुराने फिल्मी गाने। आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। सुबह के 10:30 हुए हैं।

0: किसान भाई बहन मन का जे नुआ उवाट एदाए रोज शनिवार के सांझ बेरा 7:30 बजे ले 8 बजे तक सुना फोन इन किसान वाणी यथा कृषि महकमा चो विशेषज्ञ बल्लो ने खोजाकारी दादा दीदी दे दे आपन मन चो खेती कमाने ले जुड़लो सपाय समस्या चो समाधान बीज ले धरून हाट बाजार तक हर सवाल चो जवाब सीधा आपन मन के मिरे दे। और हाँ, ये कार्यक्रम जो रिकॉर्डिंग होए से रोजे मंगलवार अड़ौ पहार 3:30 बजे ले 4 बजे तक तो आपन मन सपाय सुना और आप लोग सवाल सीधा आम के फोन ने सांगा। आमचो फोन नंबर आय 07782226666। फोन इन किसानवाणी आपन मंचो सवाल आपन मंचो कहानी खेती बाड़ी चो जुबानी आकाशवाणी जगदलपुर ने।
1: एक मजबूत घर बिल्कुल उस पिता की तरह होता है जो हर मौसम सहकर भी घर की नींव को कभी हिलने नहीं देता।
2: आपके घर के लिए भरोसे का दूसरा नाम चेटिनाड सीमेंट का मैक्स क्रीट सीमेंट 64 सालों की बुनियाद के साथ। चेटिनाड सीमेंट द परफेक्ट कंक्रीट चॉइस।
3: मीडियम व्यू और एफएम बैंड पर ये आकाशवाणी का जगदलपुर केंद्र है। गुरुदम कार्यक्रम में आज सुनिए लच्छू राम और साथियों के स्वर में गोंडी लोकगीत।